राम राम ओ नमस्कार रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि में रामबहादुर थारू संग अंजना चौधरी के स्वागत बा। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद राष्ट्रीय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र संगठित समन्वयमा रेडियो टाइगर बर्दियासी उत्पादन गर्ल कृषि विशेष रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषिमा कृषि प्रविधि संगीत सम्बन्धित मेरमेरिक जानकारी कृषक मुकनसम्म पुगाइला ओ कृषक मुक र कति अहिले खेती प्रणालीमा आयल समस्या प्रश्न जिज्ञासा कृषक मुकनके आशा अपेक्षा गुनासो ओ सुझाव सुनके मेरमेरिक जानकारी देहना उद्देश्य से

0: अशोक साल त ढुक्क नारे बल्ली
1: हा त पोर्सालिक बाट सम्झोट आम हिन्द लक्टेर हटबरा पानी बस्दा बेर अस्ति चिमचाम कहाँ र सेक्जाए त सोचो त लट्ठी चिक्कन घर डान डान पानी बर्से टिकी मन छटपटाए लाग
0: हा त धन्न ब्यालम्ब ढिकुम सुरक्षित ठाउँमा सरली नारे बत्ती
1: हा हो बदा
2: बर्खक ब्यालमा बहिया ढ्यार जोखिम रहत उहमार बहिया से बचकला पहिला सावधानी अपनाए लड्या खोलम पानी बरहल बाकल से सावधान रही एम्बुलेन्स सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यान हिलक और से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ बर्दियाको आवाज रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज

0: पहिला चेक जाँच गराएपछि मात्रै विवाह गर्दा जन्मिने सन्तानलाई पनि राम्रो हुन्छ भनेका थिए। यसबारे बुझेर मात्रै बिहेको कुरा गरौं कि?
1: तिमीले ठिक कुरा गर्यौ। अरू जातिमा भन्दा हाम्रो जातिमा सिकल सेल एनिमिया रोगको संक्रमण धेरै देखिएको छ। यो रोग भएको व्यक्तिले अर्को यही रोग भएको व्यक्तिसँग विवाह गर्यो भने उनीहरूको सन्ततिमा पनि यो रोग सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ रे।
0: ए कुरा त्यस्तो पो हो? अब त्यो कसरी थाहा पाउने त दाई?
1: ल सुन, विवाह गर्नुभन्दा पहिला केटाकेटी दुवैजनाको सिकल सेल एनिमिया रोगको अनिवार्य चेक जाँच गराउनु पर्दछ र यो रोग सन्ततिमा लाग्नबाट रोक्न सकिन्छ।
0: ओहो, धेरै कुरा सिकाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। छोरीलाई आजै सिकल सेल एनिमिया जाँचका लागि अस्पताल लिएर जान्छु।
2: समयमै सिकल सेल एनिमिया रोगलाई पहिचान गरेर मात्र विवाह गरियो भने आफ्ना छोरा छोरीमा यो रोग लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ। त्यसैले सिकल सेल एनिमिया अनिवार्य जचाउनुहोस्।
3: ठाकुरबाबा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: बाबा, मेरो जन्मदिन पनि आउन लागिसक्यो, केक अर्डर गर्नका लागि कहाँ जाने?
5: अब ढुक्क भएर मनकामना बेकरी एन्ड केक सप फुरिगाउँमा जाने नि।
6: हामी कहाँ दुध, दही, मही, घिउ, पनिर, छुर्पी, लस्सी, विभिन्न प्रकारका आइसक्रिम, जन्मदिन, वैवाहिक समारोह, वार्षिक उत्सव लगायतका कार्यहरूमा आवश्यक पर्ने केक पाइनुका साथै चिया कफी पनि उपलब्ध छ। अब नयाँ व्यवस्थापनका साथ मनोकामना केक एन्ड बेकरी सप पुरानो ठाउँबाट कञ्चनपुर जाने बाटो एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको तल्लो सटरमा सरेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। प्रोपराइटर सुशील रावत, सम्पर्क नम्बर 98245-51207। मनोकामना बेकरी एन्ड केक सप, भुरीगाउँ बजार, बर्दिया।
7: हाँ, तब पतलिया याद करो तो जू डराए लागत है। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
8: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गए।
9: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होता है, यही नाते बाढ़ से बचे खर्ती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे, सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
10: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
11: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज। गर्जन सधैं बाज्छ।